2013 की बात है। इस साल में हुआ ये कि विराट और अनुष्का पहली बार मिले एक शैम्पू का कमर्शियल शूट करते हुए। दोनों को क्या ही खबर थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, फिर शादी, उसके बाद बच्चे, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस समय दो विराट वॉज वन ऑफ इंडियाज राइजिंग क्रिकेट स्टार्स और अनुष्का ऑलरेडी एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो इनिशियल उनका जो इंट्रोडक्शन था वो कैजुअल था, बीच में उनके एक दो बार ब्रेकअप भी हुए, बट दे एक्चुअली एंडेड अप हैविंग अ फेरी टेल वेडिंग इन इटली, जो वेडिंग सबको याद है। बट यू नो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, जब दोनों विराट एंड अनुष्का मिले थे ना, दे मेट ऑन अ वर्क प्रोजेक्ट। दोनों नहीं सोच रहे थे कि उन्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा। तो अगली बार आप एक गंदी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे दुनिया में सबसे खराब जॉब आप ही का है, हो सकता है ऑन दी अदर साइड ऑफ दैट पीपीटी इज द पर्सन जो आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी है। कपड़े ठीक से पहन कर जाना, पीपीटी मीडियोकर बना लो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन लव कम्स इनटू योर लाइफ। इट कुड बी व्हाइल शूटिंग अ सिली लिटिल कमर्शियल फॉर अ शैम्पू एड। दैट सेड, अगर आप ऑलरेडी अपने राजकुमार या राजकुमारी को मिल चुके हो, अपनी स्टोरी सुना दो यार। आप ही के फेरी टेल्स के मद्देनजर रखते हुए तो मैं जिंदा हूँ। ऑन दैट नोट, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RocHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स ऑल।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एक्स सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे।

0: यू नो आई लव द वर्ड किस, लेकिन किस को जब हिंदी में बोलते हैं ना तो वो वाला वर्ड मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है. पप्पी, ऐसे लगता है हम किसी कुत्ते की बात कर रहे हैं. और मैं आपसे किस और पप्पियों की बात इसलिए करी हूँ ऑल्सो बिकॉज आई लाइक किसिंग. लेकिन मेरे साथ लाइन पर माहिरा है, और माहिरा की जो प्रॉब्लम हैज़ अ लॉट टू डू विद पप्पियाँ झप्पियाँ पाले हम. हाय माहिरा. आई एम सॉरी, मतलब मैंने आपसे पूछा नहीं कि भैया क्या प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट बता दो. हमने फेसबुक पे इतनी बातें कर ली थी इसके बारे में दैट आई जस्ट थॉट लाइक यू नो लेट्स कट टू द चेज एंड फाइंड आउट कि महिरा की जिंदगी में प्रॉब्लम है क्या. हाँ
1: So, he's great in bed. But when it comes to just making out and kissing and everything, so, मतलब वो इतने weird तरीके से kiss करता है ना, मैं आपको मतलब कैसे समझाऊँ? It's like पच पच पच यार, इसके बाद खाना खा रहे हैं खोल के. So I'm like मतलब और the times are like yeah, I can't really stop and tell him ki what are you doing. So it's like I'm like ऐसे मोमो खाया वो चप चप करके मेरे lips पे.
0: यू नो मुझे उससे हमेशा याद आती है, जो भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स ऐसे किस करती है ना, मुझे हमेशा लगता है कि उनके दिमाग में उन्हें लगता है कि वो मोमोज खा रहे हैं. यू नो नम नम नम आय हाय एव. लेकिन यू नो द थिंग इज सर, अगर बॉयफ्रेंड बुरा किसर है तो बॉयफ्रेंड बुरा किसर है. मैं आपको कहती कि अगर इतना खराब है तो छोड़ दो, बट यू आर सेइंग द एक्शन इज अमेजिंग, है ना.
1: या दैट्स ट्रू.
0: ओके कितनी यूनिक. कभी कभी मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं डॉक्टर बन जाती यार, मतलब उसमें कम सिरदर्द होती. यहाँ बंदी कह रही है कि बंदा किसिंग नहीं करता ठीक से, तू बता क्या करूँ मैं. आई एम लाइक कि अच्छा ठीक है सोचने दे. तो एक काम कर, जो यूट्यूब पे आई एम श्योर, मुझे पता नहीं है बट मैं अभी पता कर सकती हूँ कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स होते होंगे ऑन हाउ टू किस प्रॉपरली, ठीक है. तो उसको बोल कि बेबी आज हम फुटबॉल मैच नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू किस प्रॉपरली. मुझे लगता है मैं खराब किसर हूँ. फिर वो तुझे कहेगा कि नहीं नहीं बेबी तू तो बहुत अच्छी किसर है.
1: एग्जैक्टली,
0: तो तू उसको ये कहना कि मुझे लगता है मैं बेटर किसर बन सकती हूँ इसलिए हम दोनों देखेंगे. या फिर यू टेल हिम कि पता है मैंने कहीं पढ़ा था मैगजीन में कि किसी करने से पहले ना हाथ पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बचपन में अपने हाथ को किस करके प्रैक्टिस करते थे कि जब मैं किसी बंदी को किस करूंगा तो मैं ऐसे किस करूंगा. तो आप उसे ऐसे ट्यूटोरियल भी सिखा सकते हो, या फिर इंटायरली कट आउट द किसिंग फ्रॉम योर रिलेशनशिप. सब कुछ हो रहा है.
1: नो ही इज लाइक ही स्टार्ट्स विद इट एंड ही एंड्स विद इट, ही इज लाइक दैट.
0: यार बंदा तो रोमांटिक है, किस करना नहीं आता तो क्या हुआ, है तो रोमांटिक. कितने बंदे तो किसी नहीं करते हैं, सोच इसके बारे में. तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए कि उसे किसिंग की ट्यूटोरियल सिखा दे, या फिर उसे बोल कि हमें हाथ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए ये वो, या फिर जस्ट टीच हिम. मैं तो हमेशा हर टाइम हर बंदी को यही कहती हूँ दैट वीमेन डोंट टेल देयर पार्टनर्स कि हमें ये पसंद है ये नहीं पसंद है, इसलिए पार्टनर्स को समझ नहीं आता हाउ टू प्लेजर द वुमन. तो उसको सीधा सीधा बोल दे दैट बेबी थोड़ा सा टंग कम कर, थोड़ा सा यू नो माउथ एक्शन बेटर कर, और व्हाटएवर यू लाइक, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड गाइड हिम. आई इट कुड ऑलवेज वर्क यू नो.
1: आई जस्ट कंसर्न दैट ही वुड बी ऑफेंडेड कि हेलो
0: धीरे धीरे बोलना कि बेबी तेरी किसिंग इतनी अमेजिंग है, मुझे ऐसे लगता है तुझसे बेटर किसा कोई हो नहीं सकता, बट ट्राई कर सकते हैं. तो पहले उसकी ईगो मसाज कर, वो खुश हो जाएगा, फिर उसको बोल ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ट्राई करा ले. जैसे बचपन में मम्मी पापा नहीं खिलाते हमें आलू की टिक्कियां और बीटरूट की टिक्कियां, ऐसे फैंसी फैंसी चीजें बना के हमें पता ही नहीं होता हम खा क्या रहे हैं वैसे. ठीक है, ट्राई करके देखें, टेल मी हाउ इट वर्क्स फॉर यू. ओके
1: Done.
0: All thank the best you so to you, Mahira. Thank you so much for calling me. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी kissing slash chup chup chup chup problem है, feel free to hit me up. क्योंकि डॉक्टर तो मैं बनी नहीं, अब जो मैं बनी हूँ तो I will suffer for it. तो whatever you do ना, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: जानू मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सिर्फ सैलेड खाऊंगी, लेकिन जानू के साथ डेट पर जाने से पहले वो जो चार बर्गर्स आप हांड के जाते हो उसका कन्फेशन कौन करेगा? हाँ,
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: वैसे आई लव द वर्ड हांड, आपने ही मुझे सिखाया हांडना क्या होता है। बट ऑन दैट नोट, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कन्फेशन है जो आप किसी और के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू वियर्ड और टू क्रेजी और जस्ट टू ओवर द एज, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी, हाउ आर यू?
0: आई एम वेरी गुड। आपने जब मुझे अपना कन्फेशन लिखकर भेजा ना, आई वॉज लाइक ओके आई नीड टू टॉक टू दिस गर्ल, शी साउंड्स क्रेजी एएफ, ओके इन अ गुड वे। बट आई वांट टू नो कि आपका ये क्रेजी एएफ कन्फेशन है क्या?
2: सो बेसिकली हुआ क्या, तो मेरा एक नया बॉयफ्रेंड बना है, ठीक है, एंड उसने अभी रिसेंटली अपना एक न्यू जॉब ज्वाइन की है। तो अब मैंने सोचा कि मैं उसके फ्रेंड्स और कलीग्स को इम्प्रेस करती हूँ, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि मैं उसको अच्छा सा खाना पैक करके भेजूंगी रोज लंच में। अब मैंने उसको एक दिन तो खाना पैक करके भेज दिया लंच में, तो अब मेरे को तो आता नहीं है खाना बनाना, बट उसे नहीं पता ये बात क्योंकि अभी हम न्यू रिलेशनशिप में आए हैं ना। तो मैंने तो खाना पैक करके भेज दिया, अब वो खाना मैंने भेजा उसे ढाबे से, हमारे घर के पास एक ढाबा है वहां से मंगवा के उसके लंच में पैक करके भेज दिया ये बोल के कि मैंने बनाया। अब वो गया ऑफिस, उसने अपने कलीग्स के साथ लंच वंच किया, उसके कलीग्स तो खाना खा के पागल ही हो गए, उनको लगा कि मैंने बनाया है, तो वो लोग कहने लगे अरे यार भाभी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, भाभी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है।
0: भाभी भाभी कैसे बन गए? अभी तो आपका नया नया बॉयफ्रेंड बना था।
2: अरे आपको पता तो है लड़कों का, अब उन्हें समझ आ गया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड हूँ, फिर इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, तो लड़के तो फिर आ जाते ना भाभी भाभी।
0: एग्जैक्टली।
2: तो फिर अब वो अगले दिन फिर मुझे बोले कि बना के दो, तुम ही बना के दो, तो मैंने बोला कि ठीक है फिर से मंगवा के कर देते हैं। मैंने फिर से ढाबे से मंगवा दिया, पैक करके दे दिया। अब तो उसके फ्रेंड्स को इतना अच्छा लगे जा रहा है, अब उन्हें हर दिन चाहिए मेरे हाथ का खाना। पर मेरा क्या है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं हर दिन अब ढाबे से मंगवा के देती रहूंगी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा तो वैसे ही बहुत रिच है, तो हाउ डू आई इवन केयर।
0: तो अब पापा के पैसों से ढाबे से खाना मंगा मंगा के अपने बॉयफ्रेंड और उसके कोलीग्स को खिला तो रहे हो, लेकिन बॉयफ्रेंड को जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन क्या करोगे?
2: उस दिन पता लग गया तो फिर मैं उसको अपने हाथ का जला भुना खाना बना के खिला दूंगी।
0: I have a better suggestion, you know, अगर आपके बॉयफ्रेंड को आपका खाना इतना पसंद आ रहा है, जो आपके हाथ का नहीं है, वो लालू काका का है जो ढाबे से बनाते हैं, लेकिन whenever he does figure out और उसको शायद थोड़ा बुरा भी लगेगा, you can always make it up to him by, you know, doing naughty things. You just forget everything else, huh? रोशिफाई कर दूं आपको इस पागलपन की कन्फेशन के लिए?
2: बिल्कुल।
0: There you go.
3: You've been roshified.
0: ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आपके दिमाग के दो तीन पेज तो बिल्कुल ही ढीले हैं, बट इन अ रियली गुड वे, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर। आप बहुत ही ऑसम हो, और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपने कुछ भी ऐसा खुराफाती किया है ना, आई टोटली वांट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट। यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

Itchy. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर गाना जो चार्ट्स पे आता है वहां रहने का हक नहीं कमाता। कुछ गाने आते हैं शोर के साथ और कुछ गाने आते हैं सच के साथ। इस हफ्ते दोनों हैं। ये है द मिर्ची टॉप 20 और मैं हूं इसका होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड इस हफ्ते का काउंटडाउन कम एक कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, प्यार के बारे में, बेवफाई के बारे में, पहली बार के बारे में, और उस बार के बारे में जो पहली बार जैसा कभी नहीं होता। कुछ सवाल हैं इस हफ्ते जो मैं खुद से पूछ रहा था और आज आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पुराने प्यार वाला गाना अब भी बनाना पॉसिबल है? क्या कोई फ्रेंचाइज दोबारा वो मैजिक छू सकती है जो पहली बार में हुआ था? और क्या बॉलीवुड 2026 में भी वही कहानियां सुना रहा है जो 20 साल पहले सुना रहा था? जवाब इस शो में है। लेट्स स्टार्ट विद गाना नंबर 20।
3: नंबर 20,
2: भूत बंगला का ओ सुंदरी। दूसरा हफ्ता एंड ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब कुछ गाने ऐसे ही करते हैं लेकिन जो आगे है वो अलग है। धुरंधर की दुनिया से दो गाने बैक टू बैक। पहले जाइए सजना, ये डेब्यू कर रहा है लेकिन ये गाना आप पहले से जानते हैं, हर एक बोल, हर एक सुर। और फिर इश्क जलाकर रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग, अलग ही आग है।
4: नंबर 19,

0: इश्क चलाकर, याद है आपको? एक डायरेक्टर ने लिटरली ऐसा ही कुछ किया था 2006 में, इश्क को जला दिया था, पूरे देश के इश्क को, विद दिस फिल्म कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर, जिन्होंने हमें राहुल और अंजलि दिए, अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, शैंडलियर वाला प्यार दिया, उसी करण ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दो शादीशुदा लोग, गलत इंसान से शादी, और एक दूसरे में सही इंसान को ढूंढते हुए। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन करण ने खुद एक बात कही थी।
1: कितने लोग हैं, कितने ऐसे सारे रिश्ते, कितने ऐसे पीपल हु वेंचर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट गिविंग इट अ थॉट, रियली विदाउट रियली सिटिंग एंड थिंकिंग इज ही द राइट पर्सन, इज शी द राइट पर्सन। कभी कभी पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम शादी कर लेते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी प्रेशर्स औरत का कभी होता है कि आई एम 30-32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड दे सकम टू दिस इंस्टीट्यूशन।
0: ये 2006 में बोला था करण ने, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही सच लगता है, इनफैक्ट शायद ज्यादा। तो अब कैंक वापस आ रही है वेब सीरीज के रूप में, और ये वही कहानी होगी, लेकिन हम अलग होंगे। OTT ने हमें मॉरली कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा दी है, हमने सब देख लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखना क्या हम इस बार देव और माया के साथ महसूस करेंगे या फिर से उन्हें जज करेंगे। इवॉल्व होना और डिसेंसिटाइज्ड होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इस सवाल का जवाब शायद वो वेब सीरीज देगी। तब तक माय पिक ऑफ द वीक वही गाना है जो उस फिल्म की तरह था, अनकंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और बिल्कुल सच। सोनू निगम एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट बेस्ट, कभी अलविदा ना कहना, बाय शंकर एहसान लॉय एंड जावेद साहब। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 14।

तो ये था रूप दी रानी, अ 90s सॉन्ग एक नई पैकेजिंग में फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग आयुष्मान खुराना द पति, वामिका गब्बी हु आई एम गेसिंग इज द पत्नी, एंड रकुलप्रीत सिंह एंड सारा अली खान हु आई थिंक आर द वो दो। तो टोटल तीन लेडीज हैं, एक हीरो है, सब साथ में नाच रहे हैं, सब काफी खुश हैं एंड सब कुछ ग्लॉसी है। वाओ, इट्स मी सुरेन। एंड बॉलीवुड का एक पुराना गिफ्ट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत सिंपल पैकेजिंग में दे देता है, चाहे वो प्यार हो, बेवफाई हो, दो दो अफेयर्स हो, और फिर भी इन सब के बीच में एक आइटम नंबर हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि अगर भीड़ अच्छी हो तो सवाल कौन करेगा। Well, I spoke about कभी अलविदा ना कहना, right? उसी subject पे, एक ही थी, गलत रिश्ते, गलत choices, लेकिन वहाँ consequence था, दर्द था, discomfort था, लोग cinema hall से उठ के चले गए थे, और यहाँ सब उठ के नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिल्म को सीरियस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एंड हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब वही कहानी, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन सिर्फ एक शाइनी रैपर में आ जाती है तो एक सेकंड रुकने का मन करता है, पूछना पड़ता है कि क्या हम सच में इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हो गए हैं। खैर, बॉलीवुड का ये चक्कर खत्म नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस। तो एक और ग्लॉसी लव ट्राइंगल, और इज इट समथिंग टोटली डिफरेंट, रूमर्स तो यही कह रहे हैं, बट ये शायद गाना ज्यादा स्टाइल के साथ है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन, दिस इज कॉकटेल 2 एंड दिस इज अरिजीत विद जब तलक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स, तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

मोहित चौहान, एआर रहमान, निशात कामिल, द एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए। तू है तो

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। और आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है,
1: नंबर 4।

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 प्लेसेस अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 प्लेसेस, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

0: Aari Aari, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that. क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची.
1: नंबर वन.

0: 11 बार 11 टाइम्स और नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot. Mirchi,

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: The magic of Coke Studio Bharat is back. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज, रैबिट आवर की प्रोडक्शन अलोंग विद कुटले खान. ए अजनबी was this week on गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. गाना नंबर 9 पर हमने सुना ए अजनबी. ऐसा नहीं होता लाइफ में, कभी कभी कोई इंसान होता है जिसको हम पूरी तरह पाते भी नहीं है लेकिन कंप्लीटली लूज भी नहीं करते हैं. वो एक बीच का एक स्पेस है जहाँ कोई नाम नहीं है, ना उसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते, क्लोजर भी नहीं मिलता. ए अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दीज सॉन्ग्स इज कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Root. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. ना अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a Coke Studio song. पिछले सीजन का है, एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. @RJKanika on Instagram पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. @RJKanika पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot.
1: Gana, Indie Top 10. Gana, Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 7.

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़ी इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है। एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़ कर ला के प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में। वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग्स जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushbu.
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी, जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहां लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा

0: But I get it. Internet has been asking for Ayushman Khurrana. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना गाने का नाम है यही हूँ मैं. It's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: मैं खोया तो ढूंढने ना आयो, चुपके से एक ख्वाब में जायो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इस इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौड़ का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रोर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज इन ट्रेडमार्क दिलजीत दोसांझ स्टाइल का गाना। गाने का नाम है डीलर। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ अभी, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाने सजेस्ट करनी है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आपको वो दोस्त हमेशा याद रहेगा जिसने कोई ऐसा गाना सुना दिया जो आपको अच्छा लगता है आज तक भी। मैं आपकी वही दोस्त बनना चाहती हूँ। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये गाने आपको पता है, आपको याद है, बस आपने अभी रिसेंटली सुने नहीं। लास्ट वीक द सॉन्ग वी फीचर्ड वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है चन्नावे बाय कुणाल गांजावाला। अर्ली 2000s का वो फेज जब इंडी पॉप एंड नॉन फिल्म म्यूजिक अपनी पीक पर था। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था। कुणाल गांजावाला की आवाज में जो उस टाइम ऑलरेडी भीगे होठ तेरे जैसे गानों की वजह से लोगों के रडार पर आ चुकी थी, लेकिन इस गाने का मैजिक ना कुणाल गांजावाला की आवाज में है ना इसके म्यूजिक में है। आई ट्रूली फील दैट जो डुअलिटी है ना इस गाने की, द कंट्रास्ट इन इट्स आइडेंटिटी। अब सरफेस पे ये गाना पॉपी पेपी, एकदम हाई एनर्जी, फुल बीट्स ऐसे कि आप ग्रूव करे बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप रुक के इस गाने के लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो सॉन्ग इज एक्चुअली अबाउट लॉन्गिंग। चन्नावे घर आ जा, मतलब वापस आ जाओ, किसी का वेट करने वाली बात है, जब किसी के बिना दिल खाली लगे वैसी वाली बात है इस गाने में। इन शॉर्ट वो मीम याद है आपको, हाउ द सॉन्ग साउंड्स लाइक, बंदा डांस कर रहा होता है, एंड व्हाट द सॉन्ग एक्चुअली मींस, बंदा रो रहा होता है। बट दिस सॉन्ग वाज सच अ रेजर, कॉलेज फेस्टिवल्स, रियलिटी शोज, हर जगह ये गाना परफॉर्म होता था, एंड आज हम सबकी कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बन चुका है। आज भी कहीं सैटरडे डीजे नाइट में जाओगे, चन्नावे गाना बज जाएगा, एंड आई एम श्योर द रिएक्शन विल बी इनसेम। सबने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कुणाल गांजावाला की आवाज में द ओजी चन्नावे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय चन्नावे।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। वंदी का नाम है आरजे कनिका, इंस्टाग्राम पर @RJ कनिका। अपना रिपोर्ट कार्ड हमें कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन गानों के रिपोर्ट कार्ड को सुनने में सबको मजा आता है। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का ग्लोबल कोलैबोरेशन रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। Then Aditya Rekhari, Kutle Khan ka Ae Ajnabi from Coke Studio Bharat on Gana number 9. Uske baad Karan Aujla, Ikki ka For a Reason this week on Gana number 8. Kina padi tu meri baan, kina sona len. Phir Gana number 7 par tha Guru Randhawa ka Vogue. संजू राठौर का बैंगल्स ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 6, फिर मिट्टा रोर का शीशा ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ की आवाज में डीलर ऑन गाना नंबर 4। करण औजला एक की बैक अगेन एज योर बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। Now it's time for the top 2 songs of the week. Anoop Jain ki awaaz, unki composition, gaane ka naam hai Arz Kiya Hai, a Coke Studio song. 14 hafton se is countdown par barqarar, Arz Kiya Hai is this week on Gaana number 2 and the numero uno song of the week. It makes me feel so proud, man. Pichle hafte se 2 position upar jump mara is gaane ne. Gaane ka naam hai Bairan, a Haryanvi song by this collective act called Banjare. Unhi ke lyrics, unhi ki composition, unhi ki awaaz. Bairan is this week on Gaana number 1. Ye 2 incredible gaane Arz Kiya Hai by Anoop Jain, Bairan by Banjare on Gaana number 1, back to back only on Gaana Indie Top 10. Vandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 2.

Energy. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Saathire, thoda theher ja, abhi raaste

0: Mitchie, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

लगता है न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी का वेदर अगर कोई पर्सन होता तो वो तुम्हें टेक्स्ट बैक तो नहीं करता। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज प्रिसिला विद यू। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। जरा वेदर का हाल चाल जानने का टाइम आ चुका है। राइट नाउ इट्स अराउंड 49 डिग्रीज फारेनहाइट विद पार्टली क्लाउडी स्काइज, लेकिन विंड जो है वो अपने फुल एटीट्यूड में फील करा रही है 43 डिग्रीज फारेनहाइट। बेसिकली द वेदर इज सेइंग सरप्राइज शॉल लेकर बाहर निकलना। लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 1 मिलीमीटर की बरसात हुई, इतनी कि तुम्हारी कैट बाहर खुशी खुशी घूमकर वापस आ चुकी होगी। आज का लो जाने वाला है अराउंड 46 डिग्रीज फारेनहाइट एंड द हाई गोज अप टू 65 डिग्रीज फारेनहाइट। सो आफ्टरनून तक थोड़ा सा रिडेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी रेनी कंडीशंस एक्सपेक्टेड रहेगी। उसके बाद स्काइज आर मोस्टली क्लियर। नेचर भी अपेरेंटली थोड़ी सी इमोशनल क्लेंजिंग कर रहा है। एंड फन फैक्ट ये है कि आज का वेदर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यस्टरडे। सेम टेम्परेचर, सेम ड्रामा, बस तुम्हारा दिन सेम टू सेम ना हो। सो आज के दिन लेयर के प्लेयर बनो। कैरी अ लाइट जैकेट विथ योर सेल्फ। अम्ब्रेला ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कुछ ज्यादा जरूरत है।

और मिर्चीदार वाइब्स बना के रखो मेरे यानी कि प्रसला के साथ. सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट्स MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: तुम्हारी चाय कितनी भी ज्यादा गर्म क्यों ना हो, द टी दैट आई ब्रिंग फ्रॉम बॉलीवुड इससे ज्यादा गर्म नहीं होगी।
1: मैं हूँ प्रसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लिसन अप, द मेकर्स ऑफ धुरंधर आर क्लियरली नॉट डन सर्विंग ड्रामा। प्रोड्यूसर्स ने रिसेंटली हिंट किया है दैट देयर इज अ बिग सरप्राइज स्टिल कमिंग लेटर दिस ईयर। हाँ जी, उन्होंने लिटरली कहा है वी आर नॉट डन विद धुरंधर येट, मतलब कि बॉलीवुड ने ऑफिशियली लर्न कर लिया है द आर्ट ऑफ टीजिंग अस इमोशनली एंड ऑल्सो डैमेजिंग अस इमोशनली अ बिट। Now fans are already putting on their FBI caps and speculating that we might get a behind the scenes documentary. And honestly, desi audiences love behind the scenes content. Hum log movie ke baad how did they make this movie dekhne mein zyada interested rehte? And can we all agree Bollywood surprises hit differently, especially around this time of the year jab logo ke paas zyada kuch karne ko hota nahi hai. Waise is weekend par karne ke liye bahut kuch hai because Mother's Day aa raha hai, and if you're still wondering what to gift mommy besides emotional stress, Tanishq लेकर आए हैं तुम्हारे लिए बहुत सारा स्पार्कल। Enjoy up to 20% off on diamond value and on making charges of gold jewelry this Mother's Day. साथ साथ में 0% का रिडक्शन है on exchange of gold above 18 carat. वैसे टर्म्स एंड conditions अप्लाइड है। और अभी तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स में प्ले करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

देखिए आज अगर आपका हैप्पी वाला बर्थडे है तो कंग्रेचुलेशंस, यू शेयर योर बर्थडे विद सम रियली कूल पीपल. नहीं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड हेलो माय बर्थडे स्क्वाड. लेट्स फाइंड आउट आज तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो केक कट कर रहे हैं. सबसे पहले वी हैव मॉडल एक्ट्रेस ओलिविया कल्पो अलोंग विद एरो स्टार स्टीवन एमिल. म्यूजिक लवर्स, तुम्हारे बर्थडे ट्विन्स में है एलेक्स वैन हेलन, डैरन हेज फ्रॉम सैवेज गार्डन, एंड आवर वेरी ओन लेजेंडरी गोअन म्यूजिशियन रेमो फर्नांडिस, एंड साथ साथ में 90s के सुपरस्टार एनरिके इग्लेशियस हु इज टर्निंग 50 टुडे. और साथ साथ में अक्टूबर 2 को क्या हुआ था ये बोलने वाले विजय सालगांवकर के स्पिरिचुअल आइकॉन स्वामी चिन्मयानंदा जी भी आज ही के दिन इस धरती पर पधारे थे. सो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे तो बिग हग्स, बिग ब्लेसिंग्स, एंड मे योर ईयर हैव लेस स्ट्रेस एंड मोर डायरेक्ट डिपॉजिट्स. एंड विद दैट चलते हैं मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, That is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मुझसे वो शेयर कर सकते हो 9033647244 पर. एंड अभी चिपक के बैठने का यहीं पर. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की.
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रीडिंग एट $4,600. $4,600 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है. आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें. ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ. सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं राजज्वेल्स.com के साथ. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू.
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में. और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड stay hot.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम, जहाँ पर हम राशियों की बात करते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी मेष राशि, टुडे रिलैक्स करो यार, यूनिवर्स हैज योर बैक इवन इफ योर कॉफी मशीन डजंट। वीकेंड वाइब्स आर लोडिंग, लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कॉन्फिडेंस तो फुल बॉलीवुड हीरो लेवल का है आज, लेकिन काम रहना जरूरी है। हर ईमेल को पर्सनल अटैक मत समझना। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 42। जेमिनी यानी मिथुन राशि, समवन माइट ट्राई टू प्रोवोक यू टुडे, डोंट रिएक्ट। रिमेंबर, साइलेंस स्केयर्स अनोइंग people the most. Lucky color is sunset orange, lucky number is 9. Cancer yani kark rashi, patience is your superpower today. Jaldi ka kaam usually New Jersey traffic ban jata hai. Let things unfold naturally. Lucky color for you is pearl white, lucky number is 28. Leo yani ki siha rashi, authority figure may act suspiciously helpful today. Matlab for your benefit ka hidden meaning aaj samajh jaoge. Put yourself first a little. Lucky color is crimson red, lucky number is 3. Virgo yani kanya rashi, exciting energy around you, bas wallet ko emotional support dene ki zarurat hai. Zyada shopping mat karna, matlab budget mein rehna. Lucky color is lavender mist, lucky number is 21. And that's it for Mirchi Rashi Zone number 1. Baki bachi 6 rashiyon ko lekar abhi thodi si der mein wapas aaungi Mirchi Mornings par. Mera naam hai Priscilla. Mujhse connect kar sakte ho Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: आपने एक बात पर ध्यान दिया है, पहले के घरों में प्लग पॉइंट्स बड़े कम हुआ करते थे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. अब देखो सीन क्या है, हर कमरे में हर दीवार पर प्लग पॉइंट होना जरूरी होता है, और प्लग पॉइंट से जुड़ा एक चार्जर होता है, और उस चार्जर के तार से जुड़ा एक इंसान है जो उस प्लग पॉइंट से मुसलसल जुड़ा होता है। लोग आज ये बात रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी एक ऐसे बंधन में फंसे हुए हैं जिससे उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिलता। फोन का बंधन यार, खुशी हो या फिर हो गम, आजकल ना ये इमोशंस रील देख कर ही आते हैं। और अगर फोन की बैटरी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो हम अपने पार्टनर्स को भले ही कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, फोन से तो हम हमेशा चिपके ही रहते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वो चार्जिंग पर हो या फिर कहीं और। आज तक तो वैसे हम जोड़ियों के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिया करते थे कि दिया और बाती, हीर रांझा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना इंसान और फोन एक ऐसा भी एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। चलो जी, इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पास तुम रहते हो सारा ज़माना सारा का दीवाना
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लकीर मूवी याद है आपको? इसकी कास्ट भी ना एक लकीर की जितनी लंबी थी।
1: मिर्ची VCR।
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स थे यार, और सारे नामी गिरामी एक्टर्स। हाँ, सानी देओल, सुनील शेट्टी, जॉन इब्राहिम, सुहेल खान, नौहीद साइरूजी, अपूर्वा अग्निहोत्री, और बाकी अगर मैं जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका नाम लूंगी ना तो दिन निकल जाएगा। वो भी लंबी चौड़ी कास्ट थी। लेकिन ये वो फिल्म थी जिसको बनाते बनाते अहमद खान बेचारे बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इनफैक्ट उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपने कोरियोग्राफी के असाइनमेंट्स लेना बंद कर दिया था, और अपनी लाइफ सेविंग्स पर रहकर उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। लेकिन इस फिल्म के बाद ही अगेन स्टार्टेड अप्रोचिंग प्रोड्यूसर्स कि वो कोरियोग्राफ कर पाए फिल्मों के गानों को। ये फिल्म लेकर वैसे सबसे पहले अहमद खान जो है वो वासु भगनानी के पास गए थे, जहां पर जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, तुषार और करीना कपूर जैसी कास्ट को साइन करने की बात हुई थी। लेकिन जैसे ही वासु भगनानी पुल्ड आउट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, तो अहमद खान स्क्रिप्ट को विक्की कुमार के पास लेकर गए, एंड तब उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी की पूरी कास्ट जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। वैसे मुझे आज भी याद है, मैं ये फिल्म देखने के लिए अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ गई थी। थिएटर में देखकर आए थे हम ये फिल्म, और मैं सच बताऊं तो भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई हो, लेकिन मैं एक भी बार बोर नहीं हुई। इतनी लंबी चौड़ी और इतनी इम्पोर्टेंट कास्ट थी यार इस फिल्म की, कि आपको सबको देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और इस फिल्म का म्यूजिक, ओए होए, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बारे में भी कुछ बात करनी है मुझे आपसे, लेकिन अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकीर मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब हुई, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक आई फील हैज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम दोज टाइम्स.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और शायद आपको ये याद नहीं आ रहा मेरे यारा, लेकिन इस फिल्म के गाने पता है कौन कौन से थे? ये

एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग. आई स्टिल रिमेम्बर कि ये मूवी देखने के बाद ना मैंने इसके गानों को सीडी पर राइड करवा लिया था और पूरे दिन ये गाने चलते थे यार प्लेयर पर. इस मूवी में ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी और वो ये कि जिस तरह के मोबाइल फोन्स इस मूवी में दिखाए गए थे ना वो ऐसे दिखते थे जैसे कि किसी बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल हो. ऐसा मजाक मैंने मूवी देखने के बाद भी किया था. लिटिल डिड आई नो दैट दीज फोन मॉडल्स वर द फ्यूचर ऑफ मोबाइल फोन्स की दुनिया. और कुछ ही टाइम में आई सॉ द सेम काइंड ऑफ फोन्स बीइंग यूज्ड बाय माय ओन कजन ब्रदर्स. अरे बातों ही बातों में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने ही भूल गई मैं. जो इस मूवी का म्यूजिक हमें इतना पसंद आया है ना इसका रीजन पता है क्या? म्यूजिक वॉज एक्चुअली कम्पोज बाय रहमान सर. तभी तो इसके म्यूजिक के एडिक्ट हो गए थे हम. एंड थैंक्स टू ये पॉइंट जो मिड्डे मोहब्बत पर उठ के आया अबाउट द फिल्म लकीर, इस गाने का जूक बॉक्स इज बैक ऑन माई प्ले लिस्ट. मैं रोज सुनती हूँ इसके गाने. यही तो खास बात होती है नॉस्टैल्जिया की. भले ही बात पास्ट की हो लेकिन प्रेजेंट में भी आपको कुछ ना कुछ देखे ही जाती है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot.
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: फ्रूटी और परिमा की कहानी याद है आपको? अरे सोनपरी
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन
3: देखो आई आई आई सोना सोनपरी आई सोनपरी सोनपरी आई।
2: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल दिस शो सोनपरी वाज अ शो जिसे देखकर लगता था कि जादू होता है यार, इफ वी बिलीव इन इट तो क्यों नहीं। एंड हमारी लाइफ कोई सोनपरी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जादू स्टिल होता है। जहाँ जिन चिराग से निकलता है, फ्रूटी को सोनपरी एक जादुई बॉल में मिली और वहीं से शुरू हुए फ्रूटी के दोस्तों के एडवेंचर्स विद द हेल्प ऑफ परिमा हु हैड देयर बैक ऑलवेज। बट यू नो सोनपरी का जो थीम सॉन्ग है वो दो बार बना। जो पहला थीम सॉन्ग था ना वो बड़ा ही सैड था, टू विच द मेकर्स रिएक्टेड एंड मेड अनदर थीम सॉन्ग और वो इतना हिट हुआ कि पहले ही मंथ में उसको कई डाउनलोड्स मिले थे। रिमेम्बर हाँ, बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि वी स्टॉप बिलीविंग इन मैजिक। मैजिक हैपेंस। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: फ्लफ मास्टर से रॉबर्ट उलमान की आवाज में दिस गाना। और ये गाना जब भी कुछ गलत काम कर देते हैं ना, या किसी को छेड़ देते हैं, या फिर किसी की टांग खींच लेते हैं, या फिर किसी को डरा देते हैं, तो ये गाना अक्सर हम अपनी पर्सनालिटी से जोड़ते हुए गा देते हैं कि बुरे बुरे हम शैतान, जरा जरा बचना रे हमसे। ये गाना नहीं है भाई, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब जो है वो वार्निंग नहीं है यार, वो तो क्लियर बात है कि इट्स टाइम फॉर मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गाने मैं आपके लिए चलाती हूँ, इनफैक्ट उनकी धुने चलाती हूँ, ताकि आप उन गानों को पहचान पाओ। एंड आज के वो दो गाने हैं ये।

मसला सिंपल है यार, आपको सिर्फ डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम, एंड भेज दो मुझे जवाब। और उसी के साथ एक और बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, मेरी कॉलेज की गोवा की पूरी ट्रिप है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड वो लम्हे फिल्म का द सॉन्ग।
3: आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है,
1: जो कि गेस हु कंपोज्ड, ऑफ कोर्स प्रीतम दा। तो अब तो ये ऑब्वियस है ही कि इस गाने की धुन का ओरिजिन कहीं और का ही है। लेट मी मेक यू लिसन टू द ओरिजिनल
3: सॉन्ग
1: बाय नोआ। बट सच कहूँ तो ये गाना कॉपीड हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस गाने से जुड़ी मेरे कॉलेज की पहली ट्रिप की यादें डेफिनेटली ओरिजिनल है, एंड सो इट रिमेन्स क्लोज टू माई हार्ट फॉर एवर। Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज खाना खाने के बाद हम उसे सीधा फ्रिज में रखते हैं, लेकिन नानी के घर पर जब फ्रिज नहीं था ना, तो खाना जाली में रखा जाता था।
2: आज की बात 90's के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90's की यादों का पिटारा। और इस जाली को मैं ऑनलाइन काफी ढूंढती रही कि कहीं तो मिल जाए ये ओल्ड वर्ल्ड चाम वाला फर्नीचर पीस, खाना रखने वाली जाली। लेकिन फ्रिज क्या आया, ये तो गायब ही हो गई यार। बैक इन दोस टाइम्स ना, नानी के यहाँ ये जाली घर के सबसे ठंडे रूम में रखी जाती थी, जिसमें खाने के बाद जो कुछ भी बच जाया करता था ना, वो इस जाली में रख दिया जाता था। और ठंडा कमरा इसलिए, क्योंकि उस टेम्परेचर में खाना जल्दी स्पॉइल नहीं होता। और सर्दियों में तो खाना फ्रिज के आने के बाद भी इसी जाली में रखा जाता था, क्योंकि तब भी हमारे घर वाले ये मानते थे कि खाना रूम टेम्परेचर में ज्यादा हेल्थी होता है और रूम टेम्परेचर पर ही इसे हीट करना चाहिए, ना कि फ्रिज के ठंडे टेम्परेचर से खाना बाहर निकाल के सीधे हीट करो। और ये फ्रिज आम होने के पहले की साइंस थी बाबू भैया। और आज फ्रिज के भी रूप बदलते हैं, नए नए मॉडल में मिलते हैं, लेकिन जाली बेचारी वक्त के जाल में फंस कर कहीं 90 के ही दौर में अटक कर रह गई है। कहीं आपको इसका लिंक विंक मिले ना, तो मुझे डीएम कर देना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90's की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर चटपटे क्रैक्स,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारा जिक्र करते ही ना तुम्हारी महक याद आ जाती है, तुम्हारे मसाले की खुशबू, उफ, यादों के दरवाजे खटखटा जाती है। जब हम स्कूल से लौटते थे ना तो रास्ते से मोहल्ले की छोटी दुकान से तुम्हें साथ ले आते थे, भैया एक क्रैक्स देना, और बस तुम हमारे पास। तुम्हें बहुत छुपा कर घर में स्मगल करना पड़ता था। कैंटीन से दो समोसे खाने के लिए मम्मा पैसे दिया करती थी, समोसा सिर्फ एक खरीदा जाता था और एक के पैसे बचाए जाते थे ताकि तुम पर न्योछावर कर पाए। और तुम्हें घर में स्मगल इसलिए करना पड़ता था क्योंकि लंच टाइम होता, और साथ ही मम्मा का डर कि अगर तुम्हारे चटखारे ले लिए तो लंच में रोटी सब्जी को कौन पूछेगा। और ये डर सही भी था यार, तुम्हारा पैकेट खोलते ही जो मसालों के फ्लेवर्स की खुशबू थी ना, हाय हाय हाय हाय हाय, वो किसी इत्र से कम नहीं थी। पूरे कमरे और हमारे दिमाग को महका जाती थी। वैसे पता है क्या, तुम दांतों में फंस जाया करते थे लेकिन फिर भी हम तुम्हारे चटखारे लिए जाते थे। याद है मुझे बचपन में अंगूठी पहनने का मुझे कोई शौक नहीं हुआ करता था, लेकिन तुम्हें खाने का मजा तुम्हें अंगूठी के तौर पर उंगलियों में पहन कर ही आता था। और ये इकलौता वो मोमेंट था जहाँ अंगूठी का शौक मुझे चढ़ जाता था। ये उम्र का फासला काफी बढ़ गया यार, हम बड़े होते गए तो छोटी दुकान के बजाय नए नए कैफेज एक्सप्लोर करने लगे, और जब स्कूल खत्म हो गया तो स्कूल से आते हुए तुम्हें घर लाने का सिलसिला भी रुक गया। बट नो हर्ट फीलिंग्स, हाँ, इतने सालों से तुमसे बात नहीं की इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भूल गए या तुमसे मतलब था तो तुम याद रहे। तुम्हें मैं ऐसे ही थोड़ी ना भूल जाऊंगी, क्योंकि जब जब अंगूठी खरीदती हूँ ना पहला जिक्र तुम्हारा ही होता है। क्योंकि आज भले ही गोल्ड और सिल्वर की अंगूठियां पहनने लग गई हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की पहली अंगूठी तो तुम ही थे। तुम क्रैक्स थे लेकिन मैं तुम्हारे पीछे क्रैक थी। तुम्हें याद करती तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई डिड नॉट रियलाइज कि रानी मुखर्जी के सांवलेपन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ये दूसरा गाना है जो उन पे बनाया गया है। कैसेट के साइड ए का चौथा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: कहीं प्यार ना हो जाए मूवी से सावरिया रे ओ सावरिया। well, जब फिल्म में इस गाने को पिक्चराइज किया गया है तो ऐसा दिखाया गया है कि इट्स एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन कि यू नो ये लोग गाना गा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ गए हैं। एंड सबसे मजाकिया चीज इस पूरे गाने के अंदर इज मुनीष बहल, जिनको हमने पूरी जिंदगी या तो सादे रोल्स में देखा है या विलनस रोल्स में देखा है, एंड यहाँ पर ही इज टोटली इनटू द सीन एंड कैरेक्टर ऑफ अ कॉमिक जीजू। बट हाँ, ये बात भी सच्ची है कि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने वाली रानी मुखर्जी रही हैं, जिन्होंने कि अपने सांवलेपन को लेकर कभी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई कि वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या वो खुश नहीं है या वो इसको कवर करना चाहती है। अगर ये गाना उनके ऊपर बना है, उनके सांवले रंग के ऊपर बना है, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए बना है, दैट मीन्स कि रानी मुखर्जी owns everything that has to do with herself, her color, her personality, which is a big thing in the industry, जहां पर लोगों को उनके looks और color से judge किया जाता है। And आज तो हम definitely इस बात के गवाह हैं कि everybody industry में हो या ना हो, they just want a Korean skin, हालांकि हम Indians हैं and we want Korean skin। दूसरी चीज, ये glutathione के tablets, injections and serums and what not जो आ गए market में, उसको लेकर भी इतना ज्यादा rage है ना। And I feel कि यार जैसे हम हैं वैसा हम अपने आप को पसंद क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक रानी मुखर्जी से ये चीज सीखना तब और आज भी वुड बी अ ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट बिगनिंग। चलो जी, नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अगला गाना यही वाला आ रहा, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: दीवाना
3: एक दीवाना शहर में
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
3: दो दीवाने शहर में.

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो ज़रा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ओवरसाइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि यू नो बहुत ही कूल लगते हैं आजकल। लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे ही हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जा कर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उन पर बहुत खूबसूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे, जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई, जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट से जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंपसूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम भाई, शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो, वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल, आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट जीना तमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिंपल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वॉज टेलिंग मी कि डिम्पल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीना तमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीना तमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को इरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को दिल दिया?
2: किया।

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना, आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, श्रेया के पास होंगे। सो कम राइट बैक।

0: कुछ कहता।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: hey! तुमने कभी किसी से प्यार

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते हैं रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। So, आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे हाईवे। अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

गायब होता है तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बनना है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: क्योंकि ये दुनिया, ये महफिल और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, ये वाली प्रजातियाँ डिसाइड की जा रही हैं थेरेपी लेने वाले लोगों के मद्देनजर। माइंड यू, मेंटल हेल्थ के हिसाब से जो इंसान थेरेपी लेता है, आइदर थ्रू अ साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट, तो ये पहली प्रजाति वाले जो लोग हैं ना, थेरेपी में जो भी चीजें इनको बोली जाती हैं उसको फॉलो करते हैं कि हाँ भाई, ये मेजर्स लेने होंगे, ये स्टेप्स लेने होंगे, अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करने होंगे, तभी आई विल बी अ बेटर पर्सन देन आई एम टुडे। वहीं दूसरी प्रजाति के जो महानुभाव है, ओहो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की चुल है इनके अंदर, क्योंकि ये थेरेपी तो लेते हैं लेकिन थेरेपी में जो भी बात समझाई जाती है उसको बस उसी थेरेपी के सेशन में छोड़ के अपना दिमाग बाहर लेकर आ जाते हैं यार। इनकी दिनचर्या वैसे ही वापस से चलने लगती है, उसी लूप में वापस से फंस जाते हैं और फिर अगले हफ्ते थेरेपी लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट, इनको बस थेरेपी में पैसे डुबाने हैं। बाकी तो आप देख लीजिए इन दोनों में से किस प्रजाति के हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

It's hot. Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is. Okay.